0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानाम् आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिक नवदश शततमे वर्षे संघलोक सेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्ष पूर्ति अवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चिटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रवि विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयम् गृहीतः।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था। उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट बार्ली ग्राम लेंटिल्स रेपसीड मसूर मस्टर्ड और सनफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: अनेन कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां सर्षपस्य 13.4 चणकस्य 83 गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता। येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35% गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक केरलम माहे आंतरिक कर्णाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा प्रदेशेषु अपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा आंतरिक कर्णाटक उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन चत्वारि सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकैः पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वाश क्रीडायां भारतस्य पुरुषदलं महिलादलं च उपान्त्यचक्रे प्रविष्टे येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रि स्पर्धायाः एक दिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं अष्ट स्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।

0: सिंह के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

0: योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
1: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
0: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों

0: को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
1: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सनत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
0: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तेज हवा के साथ ही वर्षा भी हो सकती है।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
2: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am V.C. Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebration.

0: बदलाव कानून और संस्थान, इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दे, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई है और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
2: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम

0: तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया? और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा। और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में यह राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को के जो के आधार पर, तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास

0: आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
1: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इंप्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे लिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है, इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है।
0: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
1: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं क्या कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस

0: कि जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही बीपीआरडी इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जन विश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में के वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
1: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इंप्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इंप्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को

0: सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ।
1: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो चार कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है और चौथा जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन चारों कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था और उस फोरम ने भी इन चार कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन चार कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
0: ये जो चार लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल

0: भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो एनपीएज हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें आईबीसी की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए, 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसकी रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स में जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए, एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड ऑफ क्रेडिटर्स की है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
0: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल

0: डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है, और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब क्योंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेवल में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
1: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक सोशल इंक्लूजन, मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट से उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते हैं तो उसके चार्जेस है। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना ये बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221.39 रुपया है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज 299 रुपीज क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूं उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहा है तो मैं क्यों करूं, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण,
1: और साथ ही एक चलते चलते अब समय बहुत

0: बचाए, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
1: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
0: जी,
1: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था?
0: यही था।
1: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है, वो सामान्य खरीदार, उसका क्या? अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है। और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है, तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के, जो आधे अधूरे पड़े हुए थे, वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है, जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है, और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
0: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: आकाशवाणी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट विच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
2: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मान्य वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण

0: एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है, इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है, इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थी, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशन की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का OCR द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञता पूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: UPSC के
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मान्यवर,
1: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आजादी से पहले हुआ था। Therefore, ladies and gentlemen, this is an institution which carries the legacy of pre-independence India and the flavor of post-independence India. 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। And therefore, UPSC truly personifies Sardar Patel's vision of strong, powerful and professional civil services, the steel frame of India. मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक

0: खास बकाव रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में यह संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो यह आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन दी वेबसाइट और प्रतिभा सेतु, सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का यह खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके मूल्यवान उद्बोधन के लिए हृदय से आभार माननीय मंत्री महोदय।
1: इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग पेंशंस एंड ग्रीवेंसेस and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is the guest of honor at the centenary celebrations of the Union Public Service Commission. And a short film on UPSC.
3: करोड़ों सपने और एक अटूट कसौटी मेरिट, साल दर साल जन सेवा के लिए 200 से अधिक परीक्षाओं के माध्यम से सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना, यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में लगभग 1,000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1,500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं। लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीनें, न भारी ढांचा,

0: एक स्मार्टफोन 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, AI से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा।
1: यूपीएससी एंड इट्स कंडक्ट इज ऑलवेज टॉप नॉच। देयर इज नो प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग ऑफ पेपर्स, देयर इज नो रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, नो कैंसिलेशन ऑफ पेपर्स। आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉडी यू कैन गेट।
2: बहुत ही ज्यादा फेयर सिलेक्शन होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका इवैल्यूएशन होगा।
0: 100 वर्षों में भारत बदला, यूपीएससी भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है। प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
3: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी, आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी।
0: यूपीएससी 100 ईयर्स ऑफ सिलेक्टिंग इंडिया।
4: संघ लोक सेवाओं के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाते हुए
5: शीर्ष नेतृत्व का प्रदर्शन किया गया हो
4: भारत मंडप
5: और देशवासियों की सेवा आराधना तभी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है, तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ कर्तव्य का बोध कराता है और हर
4: भारत मंडप के लिए संघ लोक सेवाओं के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
5: सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहाँ
4: मंत्री
5: शताब्दी स्मारक टिकट
4: ले रहे हैं।
5: शताब्दी स्मारक सिक्का एवं लोक सेवा
4: शताब्दी संबंधित
5: टिकट और सिक्का
4: माननीय प्रधानमंत्री
5: संकलन का विमोचन
4: जारी किया
5: जा रहा है। आपसे
6: दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल
5: प्रकल्पों का विमोचन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
6: रिलीज अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप, कमेमोरेटिव कॉइन एंड अ पब्लिकेशन टाइटल द 100 लैंडमार्क जजमेंट्स। And the postage stamp is priced at 5 rupees and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item and the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026 and it is valued at 100 rupees. And the publication 100 Landmark Judgments, the commemorative postage stamp, the commemorative coin and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
4: माननीय प्रधानमंत्री ने
5: देशों के राष्ट्राध्यक्ष
4: स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया।
5: वही ओजस्वी वाणी
4: जो बता दें
5: 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का शंखनाद
4: यूपीएससी के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है।
5: प्रधानमंत्री जी से अब समारोह के उद्बोधन के लिए अपने आशीर्वाद।
6: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीके मिश्रा जी, टीवी सोमनाथन जी, अजय कुमार जी, यूपीएससी के सभी माननीय सदस्यगण, अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, मैं आज इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी और भारत के

कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें। साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है। ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं। आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, से कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। वे सभी

अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर

अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था, ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई हैं, और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर, 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए, उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी है। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है, और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर

कम होगा और हमारे नागरिकों खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिख कर रखे प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं। ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि
नागरिक के हितों को

सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटिसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीप फेक्स होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसी को उन रिफॉर्म पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को, देश के सभी चयन आयोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बार को लॉक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा। साथियों,

आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, जिसमें देश के सभी सीएस 3 दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए, उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्रॉस लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईकॉन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका उपयोग हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाले टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है, आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था तो बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांव और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है, पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है।

0: ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 44.5 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अभी संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध कर रहा है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming 2 decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that touchstones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from now. Nagrik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant, as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC

0: is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने यूपीएससी की ऐतिहासिक यात्रा, लोक सेवा की भूमिका और देश के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे. प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया. श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित यह समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है. 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रवाहों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया. आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार पर करने का एक अवसर भी है. भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं. नमस्कार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
2: ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇನ್ನೀಗ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.

0: Century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance, addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से

0: चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता

0: पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करा दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी

की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जानना। VAKT एक टेक्निक टर्म है जो विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक और टैक्टाइल अप्रोच रखते हैं, यानी लर्नर्स जो भी हैं ये स्पेशल नीड्स के डाइवर्स हैं, यानी मुख्तलिफ लर्निंग एबिलिटीज होती है इनमें, जैसे विजुअल यानी तस्वीरें देखकर सीखना या जो वीडियोस देख के सीखना, ऑडिटरी यानी सुनने की सलाहियत में बहुत माहिर होना और सुन के सीखना, और किनेस्थेटिक माने छू के, चीज छू के सीखना या महसूस करके सीखना, और टैक्टाइल माने जाके उस जगह पे अपना एक्सपोजर दिखा के या हर जगह जान के पर्टिकुलरली वो तरीके से सीखना, इसे टैक्टाइल अप्रोच कहते हैं। तो इन सब टेक्निकल टर्म्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, इन सब तरीकों से अगर बच्चा सीखेगा तो डेफिनेटली प्रोग्रेस दिखाएगा। और हर बच्चों के लिए खास मंसूबा बनाना, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो होता है हर बच्चों का बनता है इसके बाद। और क्योंकि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का टीचिंग एबिलिटी कैसी है, यानी कौन से तरीके से बच्चा सीख सकता है ये आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेंथ्स उनके बच्चे के क्या होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं, और एक प्लान बनाते हैं जिसको इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बोलते हैं। और तालीमी ताकत को उभारना, यानी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान बना के उस पे वर्क करना, बहुत सारे एग्जांपल्स शो करते हैं हम लोग कि ये बच्चे डेफिनेटली प्रोग्रेस करके दिखाएंगे फ्यूचर में। उसके अलावा स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो राब्ते की सलाहियतों को बढ़ाना, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, बिना बोले कम्युनिकेशन के तरीके जैसे आवाज, पेक्स या AAC है, इनको यूज करना, या मुआशरी गुफ्तार यानी स्पीच पैथोलॉजिस्ट स्किल्स पहचानती हैं, जैसे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स या सोशल इंटरेक्शन ये सब कैसे सिखाएं, ये उनका ऑब्जर्वेशन होता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि रोजानी जिंदगी में अपने स्किल्स होते हैं जैसे डेली लिविंग स्किल्स या एक्टिविटीज उनको रोजमर्रा की जिंदगी में करने की, हाथ की बारीकी वाला हरकतें यानी फाइन मोटर स्किल्स, और सेंसरी प्रोसेसिंग जो तवज्जो और कारकर्दगी बढ़ाए, यानी अगर बच्चा सेंसिटिव है साउंड से लेके या टेस्ट से लेके, इनको फेमिलैरिटी महसूस करा के सेंसरी इंटीग्रेशन करके उसको कम करना। तो अगर हम लोग इन सब मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में सुधार देखेंगे और डेफिनेटली बच्चा प्रोग्रेस करेगा अपनी काबिलियत के हिसाब से।
1: माशाल्लाह, यह सब माहिर लोग कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं?
0: हाँ, हम मुंतजम टीम मीटिंग्स करते हैं जहाँ मकसद तय करना यानी गोल सेटिंग रखना, फिर तरक्की का हिसाब करना यानी इवैल्यूएशन करना, इसमें हम खानदान को भी शामिल करते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट गोल सेटिंग जो है वो कैसे करते हैं हम लोग, कि ये जो प्रोफेशनल्स हम लोगों ने जिसके बारे में अभी बात की है, जैसे स्पेशल एजुकेटर, देन स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इन सबको हम लोग बच्चे के साथ ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ते हैं। जब वो लोग एक दो दिन या एक दो घंटे या जितना भी टाइम लेते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है और इनके कैपेबिलिटीज क्या है, यानी ये कितने एबल हैं करने में थोड़ी चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सब नोट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं तीनों चारों बैठ के और उनको नोट करते हैं। इसके बाद हम पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं जो माँ बाप होते हैं या नजदीकी रिश्तेदार होते हैं जो बच्चे के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में है, तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही ये पॉसिबल होता है, एक प्लान बनता है जिस प्लान के हिसाब से हम स्कूल में, अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्पेशल स्कूल हो, इंक्लूसिव स्कूल हो, जो भी हो, इसमें जरूरी है ये इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान। उसके बाद हम सेम इम्प्लीकेशन हम प्रोवाइड करते हैं घर पे भी, ताकि माँ बाप और जो बहन भाई साथ हैं अपने खानदान में जो भी हैं उनके साथ जीने वाले रोजमर्रा की जिंदगी में, वो लोग भी इस्तेमाल करें और बच्चे में जल्दी प्रोग्रेस दिखाएं। तो इन सबको करने से क्या होता है कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे बच्चे के लिए, जो स्कूल में और बाहर की जिंदगी में और घर में तीन जगह भी जनरलाइज होगा, यानी आमूमन तरीके से जैसे बच्चा अगर स्कूल में कर रहा है तो घर पे भी करेगा, और वो आदतें ऐसी हो जाएंगी कि बाहर जाके ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे में ये खामियां हैं। तो इस लिहाज से हम लोग कोलैबोरेट करके अगर काम करेंगे तो बच्चे में डेफिनेटली प्रोग्रेस देखेंगे।
1: बहुत खूब। ये कुदरती काबिलियतों को कैसे उभारा जाता है, अमली हिकमतें क्या हैं?
0: उभारने का मतलब जबरदस्ती नहीं, परवरिश है। हम ये हिकमतें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहला कदम है ऑब्जर्वेशन, बच्चे को कुदरती माहौल में देखना, जैसे किस गर्मियों में वो ज्यादा दिलचस्प होता है, कहाँ वो कामयाबी महसूस करता है, क्या पैटर्न्स दोबारा दोबारा होते हैं। दूसरा कदम है स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, ये क्या होता है कि रोज एक वक्त उस सरगर्मियों के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात बढ़ाना, यानी आज उसने एक स्टेप इंडिपेंडेंटली किया है तो कल हम लोग एक और स्टेप ऐड करेंगे विद प्रॉम्प्ट या सपोर्ट, ताकि वो पहला स्टेप जो करा है उसने उसका कॉन्फिडेंस रखे।

0: और दूसरा स्टेप करने में मदद लेके करे। गलतियों को सीखने से ही मौके बनते हैं, तो इसी तरह से हम लोग इनमें प्रोग्रेस देखते हैं।
1: वक्त कितना लगता है ये काबिलियतें उभारने में?
0: इट डिपेंड्स, यानी हर फर्द पे डिपेंड करता है कि थोड़े बच्चे कम वक्त में जल्दी सीख लेते हैं, थोड़े बच्चे बहुत टाइम लेते हैं सीखने में, लेकिन उसके बाद अगर सीखना उनको आ गया है कैसे है, कैसे सीखा जाता है, तो उनको उसके बाद सीखने में बहुत आसानी होती है। यानी लर्निंग हाउ टू लर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि कैसे सिखा रहे हैं हम लोग, ये सब कैसे होगा सक्सेसफुल, पहले जब ऑब्जर्वेशन होगा, फिर असेसमेंट होगा, फिर प्लान बनेगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल होगा। लेकिन आम तौर पर 3 से 6 महीने लगते हैं शुरुआती ताकत की पहचान करना बच्चे में या जो इंडिविजुअल है उसमें, 6 से 12 महीने में बुनियादी स्किल का इंकिशाफ, देन 1 से 2 साल में एडवांस काबिलियतें और हकीकी दुनिया में इस्तेमाल, और 2 से ज्यादा साल महारत और खुद मुख्तार होने में यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस में लगते हैं। कुंजी इस्तेमाल और सबर में है, हमें ये जरूर याद रखनी चाहिए।
1: माशाल्लाह, बहुत सबर का काम है। आजादी का मतलब क्या है न्यूरोडाइवर्स अफराद के लिए, कैसे हासिल होती है?
0: आजादी का मतलब ये नहीं है कि वो आम लोगों की तरह हर काम करे। आजादी का मतलब जिंदगी में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन और मुआशरे में योगदान है। यानी आजादी दर्जात होते हैं, जैसे दर्जा, पहला दर्जा है साक्षी आजादी, जैसे खुद की देखभाल करना यानी सफाई, खाना, कपड़े, यानी बेसिक एडियल्स होते हैं, एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग या लाइफ स्किल्स, वो हासिल करना। फिर दूसरा होता है वक्त की इंतजाम और रूटीन फॉलो करना, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, बहुत जरूरी चीज है जो हम लोग इन बच्चों को फंक्शनल एकेडमिक्स में सिखाते हैं। और बुनियादी हिफाजत का शऊर, यानी अपने आप को महफूज रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है कि सिक्योरिटी या सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है बच्चों के लिए या इंडिविजुअल के लिए, कि हम अगर बच्चे को ये ना सिखाएं कि ये सही है, ये गलत है, ये डेंजर है, ये इंसान हमारा अच्छा नहीं सोचेगा, ये सब अगर महसूस नहीं कराएंगे, प्रेस नहीं कराएंगे, तो बच्चा डेफिनेटली इस मामले में वीक हो जाएगा। तो पहला दर्जा है साक्षी आजादी, यानी सेल्फ अवेयरनेस विद ऑल द सेल्फ एबिलिटीज द चाइल्ड कैन डू, या बच्चा कर सकता है। दूसरा दर्जा है मुआशरी आजादी, यानी कम्युनिटी में आराम से घूमना फिरना, आवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, शॉपिंग और बैंकिंग की बुनियादें, इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना, यानी इमरजेंसी में किसको अप्रोच करना या किसको मिलना, ये सब। तीसरा दर्जा है माशी आजादी, यानी स्किल बेस्ड रोजगार, वो कौन से स्किल में माहिर है और उसको उस फील्ड में रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चीजें अगर है तो ये माशी आजादी है। इसमें पैसों का इंतजाम, माली प्लानिंग की बुनियादें भी इंक्लूड होती है, यानी फ्यूचर प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी होता है बच्चे के लिए या इंडिविजुअल के लिए। यहाँ टीम का योगदान आजादी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। जो टीम पहले बच्चे के साथ कर चुकी है, काम कर चुकी है, वो टीम इन सलाहियतों में भी मददगार हासिल करता है।
1: मुस्तकबिल में क्या इम्कानात हैं, कौन से करियर फील्ड्स खुले हैं न्यूरोडाइवर्स अफराद के लिए?
0: मुस्तकबिल बहुत रोशन है, टेक्नोलॉजी और शौर के साथ नए मौके पैदा होते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पैटर्न रिकॉग्निशन का स्किल कीमती है, जैसे बच्चे, ये जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें पैटर्न फॉलोइंग का स्किल बहुत हाई होता है और हाई तो ये एबिलिटी अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी वाइज, इन बच्चों को या इन इंडिविजुअल्स को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स में यूज कर सकते हैं। फिर डेटा एंट्री और तहलील में तफसील का ख्याल रखना, बहुत माहिर होते हैं, यानी रिपीटेड वर्क करना इनका बड़ा शौकिया काम होता है। और ग्राफिक डिजाइन में नजर की तख्लीकियात, देन वेबसाइट मेंटेनेंस में निजामती अप्रोच, यानी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसीलिए ये अप्रोच बहुत उनके लिए कामयाब होता है। दूसरा है फोटोग्राफी, जिसकी आर्ट में बहुत सलाह हैं, बच्चा अगर शुरू से उसमें ट्रेन होगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके परसीव करेगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, एंगल वाइज और सब, और फोटोग्राफी में ये माहिर होते हैं। और दूसरा है आर्ट और दस्तकारी में ये आर्ट और दस्तकारी और प्रोफेशनल से जुड़ेंगे, डेफिनेटली ये अपना फ्यूचर देख पाएंगे इसमें। और तीसरा है खिदमती सेक्टर्स में, जैसे हॉस्पिटैलिटी में अच्छे से ख्याल रखना, तवज्जो देना, या जानवरों की देखभाल में कुदरती रहम है इनमें, तो ये एबिलिटी भी है इनमें, अच्छे से ये लोग कर सकते हैं। और रिटेल में कस्टमर सर्विस में तो बहुत अच्छे होते हैं बहुत से न्यूरोडाइवर्स एडल्ट्स या इंडिविजुअल्स, जो कुदरती तौर पर बड़े अप्रोचेबल होते हैं, अच्छा महसूस कराते हैं आगे वालों को, तो इनके पास पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कारपेंट्री और वुडवर्किंग में प्रेसिशन, गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग में सबर, और पकाने में, बेकिंग में, इन सब में इनमें अगर दिलचस्पी है इंडिविजुअली तो डेफिनेटली

0: जो कर सकते हैं करियर इसमें। बट एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो लोग सीख रहे हैं एररलेस सीखें। अगर एररलेस सीखेंगे वो लोग तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो भी काम करेंगे विदाउट एरर्स करेंगे। हम लोग कैसे सिखाते हैं, हमारी एक टेक्निक होती है सिखाने के लिए। अगर बच्चे के स्ट्रेंथ्स नोटिस करते हैं हम, तो बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेंथ हम क्या करेंगे, थोड़ी मुश्किल एक्टिविटीज देंगे। तो बेस अगर स्ट्रांग है उनका तो मुश्किल एक्टिविटी थोड़ी मुश्किल होगी, उस टाइम हम प्रॉम्प्ट करते हैं। एक बार प्रॉम्प्ट करेंगे, दूसरी बार प्रॉम्प्ट करेंगे, तीसरी बार हम फेड करेंगे वो प्रॉम्प्ट। अगर ये तरीके से बच्चा सीख रहा है तो एररलेस लर्निंग होगा। एररलेस लर्निंग मतलब पक्का सीखना, गलती से सीख रहा है बच्चा, करेक्ट वे से सीख रहा है। अगर नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चा है तो वो बच्चा क्या करता है कि गलती करता है, समझता है, फिर सीखता है। लेकिन न्यूरोडाइवर्स बच्चों में हम लोग वो ऑप्शन नहीं रखेंगे कि वो बच्चा गलती करे, उसको इमीडिएटली प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी इमीडिएटली उसको मदद हासिल कर देंगे ताकि वो गलती ना करे और एररलेसली सीखे। क्योंकि एक फिक्स्ड अप्रोच होता है उनका, तो वो अप्रोच हम नहीं चेंज कर सकते कभी कभी। तो ये तरीके से हम अगर करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बच्चे में प्रोग्रेस देखेंगे या इंडिविजुअल में फ्यूचर में।
1: इंशाल्लाह ऐसी मेहनत आप करेंगे तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे, उनकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स को क्या फायदे होते हैं हायर करने से?
0: एम्प्लॉयर्स को शानदार फवायद मिलते हैं, जैसे काम की जगह के फवायद अलग होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस अलग होता है। तो मैं पहले तो काम की जगह के फवायद बताती हूँ। ये लोग बहुत वफादार होते हैं, यानी जॉब स्विचिंग कम करते हैं। तो इसमें एक चीज है कि अगर किसी को हायर किया जाता है न्यूरोडाइवर्स को, तो डेफिनेटली अपना काम जिम्मेदारी से करेगा, बहुत भरोसे वाला होता है और अलग नजर से देखते हैं काम को। तो डेफिनेटली उनमें आप काम के लिए सलाहियतें भी बहुत नफीस देखेंगे। और टीम बिल्डिंग में क्या करेंगे वो लोग, इनके प्रेजेंस क्या करता है, दूसरे एम्प्लॉयज के दिल में रहम पैदा करता है कि हम इनको वेलकम करें और एक्सेप्ट करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है, शामिल करने वाले कंपनी की इमेज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि ये कंपनी में अगर न्यूरोडाइवर्स इंडिविजुअल्स हैं तो डेफिनेटली उनको कंसिडरेशंस मिलती हैं गवर्नमेंट से भी, प्लस एक अच्छा अप्रोच भी फील कराता है सोसाइटी में। सो डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ नजरियात, फैसला आजादी इम्प्रूव करते हैं हम लोग इस तरीके से। तो डेफिनेटली अगर इनको हायर करेंगे तो बहुत फायदे होते हैं।
1: आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगी आप?
0: मैं कहना चाहूंगी कि खानदानों के लिए, जो पेरेंट्स हैं या नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी कि आपके बच्चे में जो खास तोहफा है वो दुनिया को जरूरत है। हार न मानिए, प्रोफेशनल्स के साथ काम कीजिए और डेफिनेटली आप इनमें प्रोग्रेस देखेंगे। जो मुआशरे के लिए ये बात है कि इंक्लूजन सिर्फ अच्छा लगना चीज नहीं है, ये मुकम्मल मुआशरे के लिए जरूरी है। डाइवर्सिटी इनोवेशन लाती है। और एम्प्लॉयर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ जॉब नहीं दे रहे हैं, आप किसी की जिंदगी बदल रहे हैं और अपने बिजनेस को भी फायदा कर रहे हैं। याद रखिए, अलग का मतलब कम नहीं, ये डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी ताकत है।
1: ये गुफ्तगू सुनने के बाद उम्मीद है सुनने वालों की सोच बदलेगी। माजूरी से आगे मुख्तलिफ सलाहियतों का खोज सिर्फ स्लोगन नहीं, ये एक तहरीक है जिसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। न्यूरोडाइवर्स अफराद सिर्फ मुआशरे पर बोझ नहीं, वो कीमती कंट्रीब्यूटर हैं जो खास नजरिए और काबिलियतें लेकर आते हैं। उन्हें मौका दीजिए, वो आपको हैरत में डाल देंगे। अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जजाकल्लाह खैर।
2: हमें आज का प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
3: कशां सुन रही थी, खुदा हाफिज़।

0: सखी सहेली
1: नमस्कार सभी सखियों को सभी सखाओं को और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन नेहा
2: तो आरती जी नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी
1: बिल्कुल और नेहा आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना
2: और इतने सारे दिन लेकर आए
1: आज समझ लो दिनों की यानी कि दिवस की बहार है पूरी
2: हाँ
1: तो हम लेकिन बीच बीच में बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ जो की सामाजिक कार्यकर्ता है उनके बारे में हम बात करेंगे उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे और साथ ही क्या लेकर आए हैं
2: मुझे कुछ कहना है हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है संगीत का जादू हमने कहा था इस विषय पर कुछ तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल हाँ, किस तरह से हो
1: कैसे करनी चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है
2: हाँ,
1: बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है बस सहायता एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है उनके अपने की तरह से काम करना है बस और कुछ नहीं करना है तो ये सारी चर्चा हम करेंगे साथ में बात करेंगे लेकिन एक गीत सुनने के बाद है ना
2: गीत
1: संगीत
2: आते,
1: क्योंकि
2: आते,
1: संगीत का दिन है ना तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया
2: तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं
1: बिल्कुल

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं
1: हाँ
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी, कि क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं, जरा बताइए तो, सस्पेंस
1: बहुत
0: क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना,
0: हाँ,
1: बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस,
0: हाँ
1: यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं, माफ
0: हाँ
1: कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया
0: हाँ
1: बढ़िया। मैं तो शाकाहार में फल
0: फल
1: भी
0: भी
1: आता
0: खा
1: है,
0: सकते हैं।
1: सब्जियां आती हैं,
0: हाँ
1: सब कुछ आता
0: जब
1: है।
0: उपवास करते हैं तो बस फलाहार
1: हाँ,
0: बोल
1: फल
0: बोल के जो
1: खाते हैं।
0: खाते हैं हम।
1: हाँ, वो फलाहार भी वही है,
0: जी
1: तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया।
0: हाँ
1: और हमारा खून भी बढ़ाती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती हैं, तेज करती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाए, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी। वैसे
0: ये क्यों
1: तुम्हें क्या
0: पूछ रहे हैं
1: पसंद
0: आप,
1: है?
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ
1: देखो,
0: गई?
1: एक तो शाकाहार दिवस है,
0: हाँ हाँ
1: समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे
0: समझ
1: हैं।
0: तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है। तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे सुश्रोता अपने जवाब दे देंगे तब।
1: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या
0: हाँ
1: पसंद है, चाय की कॉफी?
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी
1: बिल्कुल
0: मिलेगी
1: बिल्कुल।
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा। जी
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है,
0: जी
1: तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना।
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन्हों खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते
1: बिल्कुल,
0: हैं क्योंकि सभी एक ना एक कभी ना
1: शाकाहार
0: कभी
1: के
0: तो
1: साथ में, शाकाहार के
0: शाकाहार
1: साथ
0: के
1: में भी
0: साथ में कुछ
1: आप।
0: कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं,
1: हाँ।
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है जो शाकाहारियों की इनकी थाली को देख कर, सब्जियां देख कर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात करते कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन

0: हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं
1: नहीं
0: कि
1: देने, अरे
0: हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना
1: जी
0: चाहिए। आपको जिस कलर की जिस रंग की सब्जी पसंद है
1: हाँ
0: आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए खाने के समय भाषण सुनना ऐसे ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रख और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली
1: हाँ
0: चीजें हैं,
1: हाँ
0: इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें उसको, आनंद उठाएं उस पकौड़ों का।
1: हाँ
0: तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे, तो हम अपनी अपनी बात करिए। आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या
1: हाँ
0: खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक ही
1: जी
0: सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है
1: नहीं, अभी
0: बोलबाला?
1: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे, लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या
0: बिल्कुल
1: बनेगा ते पनीर, कल
0: हाँ,
1: कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
0: कोई
1: आज थोड़ा
0: कोई
1: सा
0: आ
1: अलग
0: रहा है
1: बना
0: तो
1: है,
0: भी पनीर, कोई
1: हाँ
0: नहीं आ रहा है तो
1: तो
0: भी
1: भी पनीर, और बहुत
0: पनीर।
1: दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर।
0: हाँ
1: तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग
0: हाँ
1: चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की, तो पनीर
0: हाँ
1: भी अपने आप को रंगों में अलग अलग
0: बिल्कुल,
1: रूपों में ढाल
0: हरा
1: लेता
0: भरा भी
1: है।
0: पनीर हो जाता है जब
1: हाँ
0: हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
1: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो
0: हाँ
1: घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी, भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो
0: बिल्कुल
1: तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग
0: सच
1: रहते
0: में
1: हैं,
0: सच
1: तो
0: में
1: बड़ा आनंद भी आता है।
0: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है।
1: जी
0: और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहिए कि
1: हाँ
0: हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है, चला ही चला जा रहा है,
1: हाँ
0: बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
1: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है,
0: बिल्कुल,
1: कड
0: लौकी को ही नेहा
1: हाँ
0: अगर हम दाल में चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है, वो
1: हाँ,
0: बहुत
1: तो
0: सारी
1: वही तो
0: चीजें
1: बात है कि
0: हैं।
1: अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ,
0: हाँ
1: मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो, तो
0: बिल्कुल
1: अलग अलग तरह से, अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई
0: हाँ,
1: मुंह नाक नहीं
0: लौकी का
1: सिकोड़ता है।
0: कोफ्ता, वाह क्या क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका
0: नहीं
1: है।
0: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी सी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते हैं वो
1: हाँ
0: किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
1: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: थोड़ा दिमाग
1: थोड़ा
0: हटे वहां
1: दिमाग
0: से
1: और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया
0: बिल्कुल,
1: जाएगा।
0: तो थोड़ा सा अच्छा
1: हाँ
0: लगेगा।

0: भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रेशम का।
2: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
3: सबको इंतजार होगा,
2: लाइव सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
3: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो की है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
2: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ हैं ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
3: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
2: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और उसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
3: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, वयस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब

0: देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
1: जी, तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थीं, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
0: बिल्कुल, और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की।
1: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
0: बिल्कुल, लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
1: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
0: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थीं।
1: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
0: यही सबसे बड़ी बात है कि अवसर देना चाहिए उनको, और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
1: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
0: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: और ये सम्मान उनके लिए ही नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते हैं ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
0: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती हैं।
5: अच्छा,
4: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं, हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं। कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे। आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा। हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
5: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको। पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं,
4: नहीं, नहीं
5: तो
4: आप आलू खा सकते हैं। सभी को आलू भी पसंद नहीं होता, सभी को कुछ भी
5: बिल्कुल, क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना, उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4: हमारे एक साथी कह रहे, कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था। छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है। फिर क्या हुआ, हो जाएगी।
5: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नहीं।
4: हाँ।
5: क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं और पनीर का रियल टेस्ट मिलता है। ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
4: बिल्कुल। और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
5: सबके साथ।
4: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना। खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, लेकिन तो पनीर उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
5: वो तो है नहीं है। लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। हाँ। आलू को बैगन के साथ भी खा सकते हैं,
4: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं।
5: बिल्कुल, आलू को पनीर के साथ। और

0: सब खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हो, ऐसी सब्जियां जिनके साथ में पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
1: तो आलू को हम जिताएं, उससे पहले एक अंतराल ले
0: अंतराल
1: लेते
0: ले
1: हैं।
0: लेते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली,
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है जी। अब हम संगीत पे आते हैं। तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीतमय हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
0: हाँ, जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है, तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
1: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है, तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
0: और कभी ऐसा भी महसूस किया होगा हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं। वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरे, वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है। और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है, लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
1: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना, तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
0: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो, या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
0: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हम हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
1: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे, लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
0: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है, बल्कि महसूस होता है, याद बनता है, और कभी कभी जीवन भर हमारे भीतर गूंजता रहता है। और यही कारण है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद और यूनेस्को समाज में संगीत कला को बढ़ावा देने और शांति और भाईचारे के आदर्शों को स्थापित करने के लिए 1 अक्टूबर का दिन संगीत जागरूकता दिवस के रूप में मनाए जाने के रूप में हमें मान्यता मिली है। संगीत को हम इस दिन मनाते हैं, या कहें कि जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी कई बार संगीत की जो पद्धतियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, जिसे हम अलग अलग रागों से संबंधित अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राग को पढ़कर अलग अलग भावों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, और कई कई अब तो अस्पतालों में भी एक संगीत थेरेपी भी दी जाती है लोगों को, मरीजों को, जिससे कि वो अपने अंदर से खुश हो सके, उनके अंदर एक उम्मीद जाग सके। हाँ। तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं।

0: और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूँ। पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि KL सहगल, पंकज मलिक, CH आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है। आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है। उन्हें और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच अच्छा। भी यही है। मैं खुश रहती हूँ तो संगीत ही हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों

0: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक साथी कह रही है, संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें संग। और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच अच्छा। भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत ही हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
1: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
0: वाह क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
1: एक
0: सुनने
1: बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए।
0: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूँ या गुस्सा होती हूँ तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द जब मिलते हैं तो भावनाओं की एक खूबसूरत दुनिया बन जाती है। शायद इसलिए संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। यही संगीत का असली जादू है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है।
4: क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूं और प्रादेशिक हो या किसी भाषा को उनको लोक गीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोक गीत हो या किसी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
3: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना। संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भरी भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क पर आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
4: बिल्कुल। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पे चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देर के रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में, कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
3: और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए
4: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है, किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
3: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए।
4: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो और दूसरी चीज है कि आप

0: क्योंकि आप बाहर लगा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते हुए आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी हैं जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
1: बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी है उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की नहीं।
1: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
0: इतने सस्पेंस आपने ले आया, लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए बताया।
1: हम उसी पे आ रहे हैं, हम लोग उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं, पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
0: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाए, घर के कोने में पड़े हुए शो पीस नहीं बनाए। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्ग

0: लोगों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
1: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वो मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है क्योंकि उनके दांत भी नहीं है। तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो, और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है कि पूरी चीज़ें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फ़ोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल और मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिए ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहें। तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं, तो वो बात भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
0: हमारे साथी वही कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपना कर जीना चाहिए।
1: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्ध जनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी लेता हूं। तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप, मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हो तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दें उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें, पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें और इसके अलावा सबसे बड़ी बात उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्ध जन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।

0: तो बहुत शुक्रिया हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
1: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन चाय ने बाजी मार ली है।
0: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
1: आलू भी जीता है।
0: और हमारे साथी लिख रहे कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो अच्छा। कॉफी पी रहे हैं वो और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब जाती है। मतलब मिली जुली सरकार चले, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही है।
1: चल रही है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं। इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला मिर्च, और सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है सच में,
0: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, तो घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाएं चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं।
1: कॉफी आज तो कॉफी पियेंगे, आज तो कॉफी पियेंगे क्योंकि आज कॉफी दिवस है, तो कॉफी तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
0: तो ये भी बताते चलें कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರನಾದರಿಸಿದ ಸಿರಿಗಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಯ 8:45. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿರಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया. गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की. बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर. अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए. और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते. भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है. नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है.
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है.
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है. 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है. 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है. 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए. नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा.
3: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे

0: ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
3: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मित मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मित की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
5: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
6: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
5: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
7: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जानबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मित मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने

0: टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
3: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
4: दिल्ली के दिन यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
5: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
3: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबू मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल है। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं।

0: प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी तीन कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. U.S. sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said, the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Machar for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump have also hailed Smith Machar as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Machar for saving the lives of 174 people on board Tel Aviv-bound Fly Dubai flight. Prime Minister Modi said, Captain Smith is a hero and India is proud of him.
2: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देश

0: में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
1: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदागी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोकतोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हार कर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रूहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
0: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किप में प्रिंस नोबल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किप इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
0: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149

0: के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में घसब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तनिपार्थी को इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अश्फरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 हराया। इसके साथ ही चिकित्सा का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
1: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गई और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
2: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयांग ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी। लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में ज्योत्सना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक सांसे थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हुटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
2: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज

0: खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने दो दो विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी जो 2017 में कटक में मिली थी। अब भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
1: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो यू डोंट थिंक सो मच, वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम यू नो यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर टू डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: इंडिया सिक्योर्ड अ मेडल इन मेंस क्वाड्रेंट सिपक टोकरो आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन द फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंट इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप एंड आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम। अर्लियर इन द डे वी सॉ इंडिया डिफीट वियतनाम इन द मेंस क्वाड्रेंट ग्रुप ए मैच ऑफ द सिपक टोकरो इवेंट। दे वन in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
2: Shooting की स्पर्धाएं आज समाप्त। कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में सातवें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर नवां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम दो निशानेबाजों को तब उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश सातवें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहाँ भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
2: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
0: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
2: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थी, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इन जूडो यामिनी मौर्या'स कैंपेन एंडेड विद अ डिफीट इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम रेपेचेज एट द एशियन गेम्स। व्हाइल इंडियाज इनंगल्बी तकलम्बाम फर्स्ट बीट नेपाल्स पूनम श्रेष्ठा बाय इपो टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। हाउएवर शी लॉस्ट बाय इपो टू नॉर्थ कोरिया सॉन्ग हुई मून इन द क्वार्टर फाइनल्स। सॉन्ग्स रीचिंग द फाइनल ओपन्ड अप द रेपेचेज राउंड फॉर तकलम्बाम। द इंडियन वाज शेड्यूल्ड टू फेस चाइनाज जिंग टैंग इन द रेपेचेज राउंड। हाउएवर द चाइनीज जुडोका वाज डिस्क्वालिफाइड before the bout. Consequently, Taklambaam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inangambi Taklambaam lost the bronze medal bout in the women's 70 kg event, getting defeated by Anujin Uzi, who won the bout by Waza Ari.
2: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद

0: टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नागल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें हुआ था। भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
1: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 leader Shannon Ruan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144 while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
0: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम की प्रतियोगिताएं थी। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखो नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचैस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
1: इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
0: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव दुमुनी मारंदी संध्या राय मामा नाय वैष्णवी पाटिल कल्याणी पाटिल अमनदीप कौर आरती कुमारी भूमिका शुक्ला गुड़िया कुमारी निर्मल्या राउत संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 एशियन गेम्स सफरिंग टू हेवी डिफीट्स इन पूल बी पूल ई इन सम क्लासिफिकेशंस एट द पलोमा मिजुहो रग्बी स्टेडियम। इन मैच नंबर वन इंडिया वाज हैंडेड अ डिफीट बाय हांगकांग चाइना 33-7 व्हाइल इन मैच नंबर टू इंडिया वाज हैंडेड अ डिफीट बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 43-5।
0: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वही रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा कैनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी सेवन में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम।

0: फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಿದು